0: किसानों की प्रगति और कृषि उद्यमों की नई क्रांति, इसमें भाग ले रहे हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी।
1: सदियों से भारत की पहचान खेती और किसानी से रही है। स्कूलों में हमें पढ़ाया गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है। स्वाधीनता के तुरंत बाद देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी करीब 52% थी। वहीं अब यह घटकर सिर्फ 17% के करीब ही रह गई है। बेशक जीडीपी में हिस्सेदारी खेती की कम है, लेकिन खेती किसानी पर आज भी देश की बड़ी आबादी, करीब करीब 48% लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय विकास में खेती किसानी के महत्व को इन आंकड़ों से मोटे तौर पर समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार भी इसे समझती है। यही वजह है कि 12 साल के अपने शासनकाल में मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई। खेती किसानी के विकास में केंद्र सरकार के योगदान और उसकी योजनाओं को लेकर आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा की श्रृंखला के तहत आज हम खेती किसानी पर ही चर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय है किसान से कृषि उद्यम तक, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के पूर्व सचिव डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। डॉक्टर बंसल और हरवीर जी, आप दोनों का स्वागत है।
2: शुक्रिया मुझे।
3: धन्यवाद।
1: आज सबसे पहला सवाल डॉक्टर बंसल आपसे, किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने में मोदी सरकार ने किन किन योजनाओं पर बहुत ठीक से फोकस किया और उसमें कितना वो कामयाब रहे हैं?
3: मैं आपको एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
1: जी
3: बता सकता हूं कि पिछले 10-12 साल में जो नई स्कीम्स आई हैं और जो बढ़ावा इस गवर्नमेंट ने दिया है, वो खास करके एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। उस टेक्नोलॉजी को हमें बहुत प्रोत्साहित करते हुए किसानों के लिए नई नई किस्में बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। और मुझे खुशी है कि पहले जैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर काम करते रहे हैं और अभी भी चल रहा है, लेकिन वहाँ रेगुलेशन के चलते हुए हम उतनी जो हमें प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। सिर्फ एक बीटी कॉटन को ही हम किसानों तक लेकर आ पाए कि जिससे हमारी पैदावार काफी बढ़ गई थी 14 मिलियन बेल से करीब 2002 में, और 2015-16 तक 40 मिलियन बेल तक चली गई थी। लेकिन अब जीएम टेक्नोलॉजी के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो है जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। 2020 में इस टेक्नोलॉजी को नोबेल प्राइज मिला है। और इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जीएम एक बहुत रेगुलेटेड टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड ओवर, इंडिया में भी ऐसा ही है, उसकी वजह से हमारी बीटी कॉटन के बाद कोई और दूसरी नई किस्म अभी तक क्रॉप्स में नहीं आ पाई है। लेकिन जीनोम एडिटिंग को हमें एनकरेजमेंट मिला इतना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोसेफ्टी रेगुलेशन से इसको हमें एग्जम्पशन दे दिया। मार्च 2022 में ये हमें एग्जम्पशन मिला कि हम जो भी बायोसेफ्टी असेसमेंट की जरूरत पड़ती है जीएम टेक्नोलॉजी में, वो साइंटिफिकली स्पीकिंग साइंस के द्वारा इस चीज को हमें एविडेंस दिया गया और साइंटिस्ट ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया। हमारी नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने ये प्रपोजल दिया कि इसमें बायोसेफ्टी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट से करीब 2 साल में एक एग्जम्पशन जो होता है वो मार्च 30, 2022 को उसका एग्जम्पशन हमें मिल गया। तुरंत साइंटिस्ट लोगों को इतनी इससे एनकरेजमेंट मिला कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अगस्त 2022 में, और उस प्रोजेक्ट के तहत मई 4, 2025 में हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये 2 जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हमने लॉन्च कर दी है। उसके साथ साथ उसको और आगे बढ़ाने के लिए बाकी सभी करीब 40 क्रॉप्स में इस टेक्नोलॉजी के द्वारा नई किस्में बनाने के लिए, जिसमें कि यील्ड भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप की बात करें, या नाइट्रोजन या और वाटर यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, या फिर ज्यादातर पल्सिस में ऑयल सीड्स में जो हम अभी तक इतने हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उनका काम और ज्यादा आगे बढ़ाएं। इस तरह से इस काम को हमें खूब बढ़ावा मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारी प्रोडक्शन जो अभी 375 मिलियन टन के आसपास है, खास करके मैं ऑयल सीड्स और पल्सिस में हमें, और मिलेट्स को भी साथ में लेकर इसमें बहुत हमें एनकरेजमेंट मिली है और हम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी और आगे हमारे देश में बढ़ जाएगी और साइंटिस्ट लोग इसमें बहुत दिन रात से हम काम कर रहे हैं।
1: जी हरवीर।

0: डॉक्टर बंसल ने तो बहुत ही एक तरह से गंभीर बात बताई और ये थोड़ा तकनीकी विषय है। जहां तक किसानों के हालात में जमीनी स्तर पर बदलाव की बात है, तो आप लंबे समय से कृषि पत्रकारिता करते रहे हैं, खेती किसानी पर आपकी गहरी नजर रही है। मोदी सरकार की वो कौन योजनाएं रही जिन्होंने किसानों की जमीनी स्थिति को, जमीनी हालत को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है? हरवीर जी,
1: देखिए उमेश जी, अगर हम देखें पिछले 12 साल को, हम ध्यान से उस पर जाएं तो
0: जी
1: कई सारे ऐसे कदम हैं जो कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जिनका योगदान है और काफी चेंजेस एग्रीकल्चर में आए। उसमें अगर मैं ये कहूँ कि देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट काम था वो था जो एग्रीकल्चर का जो ढांचागत जो सुविधाएं हैं जिसमें
0: जी
1: सिंचाई सबसे इम्पोर्टेंट है। तो
0: जी
1: प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के जरिए सिंचाई के ऊपर फोकस किया गया और उसके बाद उसमें अगला कोशिश की गई टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन, मोर क्रॉप पर ड्रॉप करके। तो
0: जी
1: एक तो यह है कि जो हमारा कृषि का जो क्षेत्रफल था सिंचित, वो हम लोग करीब ओवरऑल जो हमारा कुल कृषि क्षेत्रफल है उसके करीब 45 से 50 के बीच में हम अटके हुए थे। 55
0: जी
1: परसेंट को भी शायद पार कर गया अगर आंकड़े हम लेटेस्ट देखेंगे तो ये एक इतनी बड़ी चीज है क्योंकि सिंचाई की सुविधा का मतलब होता है कि किसान को उसकी फसल का एक एश्योरेंस मिलना कि आश्वासन मिलना कि उसकी फसल पैदा होगी और जब
0: जी
1: फसल को जरूरत होगी उसमें वो सिंचाई कर सकेगा। तो
0: जी
1: ये एक बड़ा कदम है कि हमने किस तरीके से जो निवेश के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल को सिंचित क्षेत्रफल के रूप में तब्दील करने की जो प्रयास हुए हैं। और उसके दो भाग जी, उसका दूसरा पक्ष जैसे मैं कहूँ, एक तो जो पहले से लंबित योजनाएं थी सिंचाई की उनको पूरा किया गया,
0: जी
1: दूसरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, क्योंकि पानी का भी एक चैलेंज हमारे सामने है। और
0: बिल्कुल
1: इसका एक ये इसमें जो गुणात्मक बदलाव होता है आमदनी में किसान की और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बड़ा बदलाव हुआ, एक तो ये मैं कहूंगा। दूसरे अगर हम जाएं कि किसान को फसल की एक सुरक्षा देना जो है उसको रिस्क जो जिसे हम कहते हैं जो जोखिम को एक तरीके से
0: करना।
1: कम करना और उसमें मदद करना, उसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें हर साल करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा 17,000 करोड़ तक जो है सरकार देती है उसमें जो प्रीमियम का हिस्सेदारी, और
0: जी
1: उसमें सब किसानों को शामिल किया गया। पहले क्या था कि जो कर्जदार किसान होते थे वो होते थे, इसमें फिर सबके लिए ओपन किया और इसको ऑप्शन बना दिया गया। तो ये एक इवोल्विंग स्कीम है, उसमें अभी बहुत सारे बदलाव लगातार किए गए जो क्रॉप वैल्यू और किस तरह से भुगतान हो और सैटेलाइट मैपिंग और लॉसेस के वो कैसे कम किया जाए। तो ये एक बड़ा इसमें ये दूसरा मेरा ये मानना है कि इसमें एक बड़ा काम हुआ। इसके अलावा अगर हम जाएं जो छोटे किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि मैं कहूंगा
0: जी
1: 2019 में शुरू किया गया, तीन
0: हाँ
1: किस्तों में जो किसानों को देश भर के जो एलिजिबल फार्मर है जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को उनके खाते में सीधे तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। उसका मकसद ये था कि जो छोटे किसान है उनको हम किस तरीके से आर्थिक मदद कर सकते हैं उस वक्त जब उनको जरूरत हो इनपुट की,
0: जी
1: उनके पास खाद की खरीदने की क्षमता हो, उनके पास बीज खरीदने की क्षमता हो। ये छोटा है बट ये एक अहम भूमिका उसकी है। और इसके अलावा मैं अभी अगर आपको बताऊंगा और कई चीजें हम आगे बात करेंगे, ये
0: जैसे
1: तीन बड़े कदम जो है।
0: किसान
1: हाँ, एक और इसमें मैं कहूंगा आपको कि
0: क्रेडिट कार्ड
1: जो
0: जो था,
1: किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है क्योंकि ये 2003 के आसपास शुरू किया गया था। उसमें किसानों को जो छोटी अवधि का ऋण जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो मिलता है, खास तौर से उसका मकसद भी फसल के जो उनके जो इनपुट होते हैं उसकी आपूर्ति में मदद करता है। और उसमें जो क्रेडिट भी जो मतलब दिया जाता है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार देती है कि 7% पर वो किसानों को देती है, और जो किसान समय पर भुगतान कर लेते हैं उनको अलग से 3% का और इंसेंटिव दिया जाता है। तो जो समय पर किसान लेकर के भुगतान कर देता है कर्ज का क्रेडिट कार्ड के तहत उसका जो प्रभावी दर है वो 4% पे आ जाता है। तो ये कुछ चार ऐसे स्टेप्स जो है जिनकी हमने बात की वो एक बड़े बदलाव की तरफ लेकर के।

0: हैं। दूसरे एक जो एमएसपी की कैलकुलेशन का तरीका था जिसमें C2 की किसानों की मांग रही है वो तो नहीं हुआ है, लेकिन A2+FL जिसमें सभी लागतें थी और उन लागतों को जोड़ के जो लागत आती है उसके ऊपर फिर फार्मर को प्रॉफिट देने की प्रक्रिया को सैद्धांतिक रूप से लागू किया गया एमएसपी तय करने में। तो ये मैं
1: जी
0: देखता हूँ कि ये जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो पड़ाव इस दिनों में जो कृषि क्षेत्र के लिए जो बड़े कदम, बड़े फैसले, बड़ी योजनाएं लागू हुई हैं उनको हम इस तरह से देख सकते हैं।
1: सही कहा आपने कि ये चार प्रमुख योजनाएं हैं, हालांकि तो बहुत सारी योजनाएं हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की कृषि से जुड़ी उपलब्धियों की चर्चा बिना पीएम किसान सम्मान की पूरी नहीं हो सकती। इस चर्चा में भी उसका बार बार जिक्र आया है। इस संदर्भ में 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन की याद आना स्वाभाविक है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उस समय उन्होंने जो कहा था, आइए उसे सुनते हैं।
2: साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है।
1: डॉक्टर बंसल, जो बायोटेक किसान और बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है या नीम कोटेड यूरिया की, उसने किसानों की स्थिति को बदलने में और खेती में उपज को बढ़ावा देने में किस तरह से भूमिका निभाई है, और क्या इससे किसानों की जमीनी हालात बदलने में बड़ी मदद मिली है या अभी देर लगेगी?
3: नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुई, मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी। और अभी ये जो आप बायोटेक किसान की जो बात कर रहे हैं, ये एक नई स्कीम है जो 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने शुरू की, और ये बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क जिसको हम कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को ये है कि इसमें एक साइंटिस्ट और किसान, वैज्ञानिक और किसान की पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि ये जो बायोटेक स्कीम है, बायोटेक किसान स्कीम, ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे जितने अलग रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, ये जो हमारे छोटे किसान भाई बहन हैं उनसे जोड़ देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल सकता है। और खास करके जो इसमें ज्यादा तरह का जो काम हो रहा है वो ग्रास रूट लेवल पर जो चैलेंजेस हैं हमारे, पानी को लेकर, सॉयल की स्ट्रक्चर या सॉयल को की हेल्थ को लेकर, या सीड या मार्केट की एक्सेस को लेकर जो इसमें जो चैलेंजेस हैं ग्रास रूट लेवल, जो फार्मर्स इसको फेस करते हैं, उसके ऊपर इसमें ज्यादा फोकस है। और इसको चलते हुए करीब 1 लाख फार्मर्स वो इसमें यील्ड इम्प्रूवमेंट जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स वहाँ बायोटेक किसान के तहत लगाए गए हैं, उसमें करीब 15% से 30% तक की बढ़ोतरी मिली है। तो 1 लाख फार्मर्स को, और खुशी की बात यह है कि इसमें स्पेशली वुमेन फार्मर्स को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर ज्यादा एम्फेसिस है कि जो हमारी वुमेन फार्मर्स है उसको इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और इसमें और प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी और चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम और आने वाले समय में बहुत ज्यादा इसको किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।
1: डॉक्टर साहब, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर भी रहे हैं। एक तरफ भारत इस तरह से तकनीकी क्रांति के जरिए, तकनीक और खाद के, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के जरिए खेती कर रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने एक और योजना शुरू की है जो हम कहते हैं, जिसे नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन जो नेचुरल फार्मिंग का, जिसे हम लोग जीरो बजट भी खेती के नाम से जानते हैं। भारत में जीरो बजट खेती की बहुत चर्चा होती है, आजकल ऑर्गेनिक खेती के नाम से भी ये बहुत मशहूर हो चुकी है। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भी शुरू किया है। इसे भी मोदी सरकार की कृषि उपलब्धियों का एक सोपान माना जाता है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: भारत में खेती को टिकाऊ बनाने, मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों की लागत

0: करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत किसानों को ऐसी कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों पर निर्भरता कम की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी थी। इसके लिए कुल 2481 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 1584 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 897 करोड़ रुपए है। प्राकृतिक खेती में स्थानीय संसाधनों, पशुधन और खेती से जुड़ी पारंपरिक जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गोबर और गौमूत्र से जीवामृत और बीजामृत जैसे प्राकृतिक इनपुट तैयार किए जाते हैं। जीवामृत का इस्तेमाल मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जबकि बीजामृत का उपयोग बीजों के उपचार में किया जा सकता है। इस पद्धति का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना, खेती में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाना और बाहर से खरीदी जाने वाली कृषि सामग्री पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद करना है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के जरिए जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मिशन के तहत किसानों को प्रशिक्षण और व्यावहारिक जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है। किसान इन स्थानों पर प्राकृतिक खेती के तरीके समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि अपनी फसल तथा मिट्टी की जरूरत के अनुसार इन तरीकों को कैसे अपनाया जाए। इसके अलावा जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने का भी प्रावधान है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाली सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कृषि सखियों और प्रशिक्षित किसान मार्गदर्शकों के जरिए भी किसानों को जानकारी और तकनीकी सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 1 एकड़ क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 4,000 रुपए की प्रोत्साहन सहायता 2 वर्षों तक देने का प्रावधान है। इस सहायता का इस्तेमाल प्राकृतिक खेती से जुड़े गतिविधियों, सामग्री तैयार करने और जैव इनपुट संसाधन केंद्रों से सामग्री प्राप्त करने में किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय की अगस्त 2026 में जारी जानकारी के अनुसार मिशन के तहत 24,031 समूहों में 11,81,000 हेक्टेयर शामिल किया गया है। इससे 24,69,000 किसानों को लाभ पहुंचने की जानकारी दी गई है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी मिशन में प्रावधान किए गए हैं। इनमें सरल प्रमाणन व्यवस्था और साझा ब्रांडिंग शामिल है। इन प्रयासों से उत्पादों की पहचान बनाने और किसानों को बाजार से जोड़ने में सहायता मिल सकती है। हालांकि प्राकृतिक खेती को सफल बनाने के लिए किसानों को सही प्रशिक्षण, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सलाह और उपज के लिए उचित बाजार मिलना जरूरी है। खेती के तरीके में बदलाव करते समय मिट्टी, मौसम और फसल की जरूरतों को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से खेती की ऐसी पद्धतियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है जिनमें उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की सेहत और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए।
1: ये दोनों परंपराएं एक साथ चल रही हैं, तो इन दोनों में तारतम्य कैसे बिठाया जा सकता है और किस तरह से ये किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है, आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे?
2: ये किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है और दोनों साथ साथ चल सकती हैं। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां हम ये जो नेचुरल फार्मिंग है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे हमारे सिक्किम की अगर हम बात करें या हिमाचल में बहुत सी और स्टेट्स हैं उसकी अगर हम बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एरियाज हैं जिसकी हम जिसमें हम बात करें। लेकिन जहां हमें हाई प्रोडक्शन जोन जो हमारे हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है या और हमारे मध्य प्रदेश में है या और हमारे महाराष्ट्र गुजरात में है, वहां जो अगर हमें हाई प्रोडक्शन लेनी है तो मैं तो ये समझता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग एक अपने भारतवर्ष में कहीं जो अलग स्टेट्स में हो रही है और इन एरियाज में हम लोग जो नई तकनीक को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों स्कीम्स का भारतवर्ष के अपने फार्मर्स को इसमें फायदा मिल सकता है। और साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो नई टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह की हम प्रोडक्ट या वैरायटीज बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जबकि नेचुरल फार्मिंग यही है कि जिसमें हम कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें या ना करें, तो हम ये भी एक तरफ से रिसर्च चल रही है कि बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड्स को भी हम जितना ज्यादा उसको यूज करें उससे सॉइल की स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, सॉइल में कार्बन कंटेंट इंप्रूव होता है, जो कि एक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ये भी एक हिस्सा है।

0: के हम सॉयल की स्ट्रक्चर, सॉयल में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ाएं, तो उसमें भी ये नई जो टेक्नोलॉजी है उससे उससे फायदा होगा। और जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जीनोम एडिटिंग जो बात कर रहे हैं, उसमें हम उसी तरह की क्रॉप्स को बनाना चाहते हैं जिसमें कम से कम पेस्टिसाइड यूज हो, कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज हो, और कम से कम वाटर से या पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अगर हम बात करें, तो दोनों टेक्निक्स में मुझे लगता है कि हमारे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। और मुझे ये उम्मीद है कि प्रोत्साहन जो दिया गया है नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ में टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना मेरे लिए बहुत अच्छा है और समझता हूँ बहुत जरूरी भी है।
1: हरवीर जी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई थी, मोदी सरकार ने शपथ लिया था, तो उस समय उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। वह लक्ष्य क्या हासिल किया जा चुका है और वो किस तरह से हासिल किया गया है?
2: देखिए, ये जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो घोषणा थी
1: जी
2: वो प्रधानमंत्री ने 2016 के आसपास की थी कि हम 5 साल में करेंगे, 2022 उसका लक्ष्य रखा गया था। उसके लिए एक अशोक दलोई जी भारत सरकार में अधिकारी रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सारी रिपोर्ट अपनी सबमिट की, और इसी तरह से उसका कोई एग्जैक्टली कोई इवेल्युएशन किस पैरामीटर के हिसाब से करेंगे ये अभी ऐसा तो संभव नहीं होता, क्योंकि तमाम किस्म की फसलें हैं, तमाम किस्म के उत्पाद हैं। तो उसमें ये जरूर है कि जो 4.5% की दर जो एग्रीकल्चर ग्रोथ में हासिल की गई है वो अनप्रेसिडेंटेड थी। इसके पहले के जो दशक रहे हैं उनमें 4% से नीचे की ही जो विकास दर कृषि और संबंधित क्षेत्र जो है उसमें हासिल की गई थी। तो ये एक बड़ा बूस्ट रहा है एग्रीकल्चर के लिए ग्रोथ का लंबे समय के बाद, क्योंकि इवन ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी एवरेज जब 10 साल का निकालते हैं वो इससे थोड़ा नीचे ही था। जो नंबर्स अवेलेबल है भारत सरकार के कृषि उत्पादन और जीडीपी को लेकर के, तो
1: जी
2: ये तो बिल्कुल सही है कि तमाम सारी फसलों के दाम बढ़े हैं, जिसमें खासतौर से जो दालें हैं और तिलहन हैं उनके एमएसपी में काफी बढ़ोतरी हुई है। खाद्यान्नों की जो एमएसपी है वो भी तेजी से बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम सारे जो दाम है वो जब किसानों को मिलता है तो उनकी आमदनी में एक बड़ा बदलाव आया है। उसमें आईसीआर का जो आईआरआई संस्थान है उन्होंने एक स्टडी भी की थी इसके बारे में, जो है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि किस तरीके से किसानों की आमदनी में लक्षित दिशा में बढ़ोतरी हुई।
1: डॉक्टर बंसल, मोदी सरकार की एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थ्रू NMEO, जिसमें तिलहन और दालों के जो फसल है उसकी प्रमोशन की बात होती है, उसको प्रमोशन करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो क्या इसमें भी कोई बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से रिसर्च हो रहे हैं? क्या जीनोम बदलने की तैयारी हो रही है? क्योंकि भारत में खासतौर पर दलहन की कमी रहती है और भारत का एक पूरा हिस्सा जो है वो दलहन फसलों पर, तो इसमें दलहन की फसलों का बहुत ज्यादा मांग रहती है, बहुत ज्यादा उनकी खपत रहती है। तो भारत को हर साल दाल की आयात के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, दाल का आयात करना पड़ता है, खासतौर पर ब्राजील और कनाडा जैसे देशों से। तो हमारे यहाँ दलहन की फसलों को, उनके जीनोम को विकसित करने के लिए भी कोई काम हो रहा है क्या?
0: हाँ, दलहन की फसलों पर पूरा भारतवर्ष का जितने भी हमारी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं आईसीआर में, खास करके जो हमारे एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, तो दलहन पर ही फोकस जो रिसर्च करता है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी जैसे आईआरआई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, वहां भी पिजन पी पर जो अरहर दाल है उस पर बहुत तरह की रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी एरिया में चल रही है। लेकिन यहाँ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो तरह की टेक्नोलॉजी है जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, एक होता है कि हम जीएम फसलें तैयार करते हैं जो बीटी कॉटन जैसे तैयार हुई, दूसरी जैसे मैंने जीनोम एडिटिंग की बात की जहां हम जीनोम में बदलाव करते हैं, खुद जो जो क्रॉप है उसी में हम बदलाव करते हैं। तो पीजीएनपी को लेकर जो हमारे यहाँ पॉड बोरर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कीड़ा खा जाता है और उससे प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, तो उसके लिए एक जीएम पीजीएनपी अरहर, उसके जो जीनोम में बदलाव करके जिसमें एक बैक्टीरिया से उसमें जीन डाला है जैसे कि बीटी कॉटन में डाला गया था, और वो अभी हमारे रेगुलेटरी सिस्टम में, हमारे एक सिस्टम है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, वहां बायोसेफ्टी रेगुलेशन के लिए वो काम आगे प्रोग्रेस हो रहा है। और इन द मीनवाइल जो हमारे बाकी जो पल्सिस की जो प्रोडक्टिविटी है वो करीब 1 टन पर हेक्टेयर है, जो कि बहुत कम है, और उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्योंकि एरिया बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, जबकि एरिया बढ़ाने से हमारे यहाँ दलहन की प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा दी है, नीति आयोग ने दलहन पर और तिलहन पर रिपोर्ट्स जारी की हैं स्पेशली पिछले साल ही, जिसमें ये बताया गया है कि हम 2030 तक किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को भी साथ लेते हुए क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज जो और हमारी एफिशिएंट वेराइटीज हाई यील्डिंग वेराइटीज खास करके दलहन और तिलहन दोनों में ही अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उसमें हम इनको एक टन से आगे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 40 क्रॉप्स में हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट बना है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, जिसमें जीनोम बदलाव की बातचीत बराबर हो रही है, उसमें 40 क्रॉप्स में जो मेजर एम्फेसिस है वो दलहन पर है, तिलहन पर, दोनों पर है। तिलहन को साथ लेते हुए मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं कि हम लोग करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल हर साल इंपोर्ट करते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको चलते हुए हमने एक जीएम मस्टर्ड भी, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड भी बनाया है, जिसकी प्रोडक्टिविटी 25-30% ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो हमारे यहाँ अभी रेगुलेटरी सिस्टम से क्लियरेंस मिली है, लेकिन अभी वो लीगल रिव्यू में है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसके इसको सपोर्ट कर रही है कि हम उसको जल्दी से जल्दी किसानों तक लेकर आएं, ताकि इस नई टेक्नोलॉजी का जब तक हम फायदा नहीं लेंगे हम बहुत ज्यादा आगे शायद बढ़ना मुश्किल होगा। तो मेरा एक ये भी एक पॉइंट रहेगा कि जबकि भारत की बहुत सपोर्ट है, नई नई स्कीम्स हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो कर रहे हैं, 500 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो किस्में तैयार हो चुकी हैं, जो हमें खेतों में जो हमारी बायोसेफ्टी रिसर्च ट्रायल्स हो चुकी हैं, उनको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए अगर मौका मिलेगा तो फार्मर्स किसानों के लिए और देश के लिए सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ने के लिए, विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए बहुत फायदा।
1: केंद्र सरकार की कृषि उपलब्धियों में हाल ही में एक और योजना जुड़ी है, नमो ड्रोन दीदी। आइए सुनते हैं इसी योजना पर एक रिपोर्ट।
3: खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे किसानों को कृषि सेवाएं दे सके और अपनी आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाश सके। केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराना है। इनका प्रमुख इस्तेमाल खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाना है। योजना के तहत चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए लागत का 80% तक केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए है। शेष राशि की व्यवस्था के लिए पात्र समूहों के क्लस्टर स्तर के संघ कृषि अवसंरचना निधि के तहत ऋण ले सकते हैं। इस ऋण पर निर्धारित शर्तों के अनुसार 3% ब्याज सहायता का प्रावधान भी है। ड्रोन उपलब्ध कराने के साथ साथ इसके संचालन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। चयनित समूह की एक सदस्य को ड्रोन पायलट का 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, ड्रोन चलाने का अभ्यास और छोटी मोटी मरम्मत तथा रख रखाव की जानकारी शामिल है। समूह की दूसरी सदस्य या परिवार के किसी सदस्य को ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। खेती में ड्रोन का इस्तेमाल करने से खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय में करने में मदद मिल सकती है। इससे किसानों को कृषि कार्यों के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। किसानों को हर बार अपना ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं होती, वे जरूरत के अनुसार महिला स्वयं सहायता समूहों से किराए पर कृषि सेवाएं ले सकते हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण महिलाओं को तकनीक आधारित रोजगार से जोड़ना है। महिला समूह ड्रोन के जरिए किसानों को सेवाएं देकर आय अर्जित कर सकते हैं। योजना को लागू करने में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग और प्रमुख उर्वरक कंपनियों की भूमिका है। इन संस्थाओं के बीच समन्वय के माध्यम से ड्रोन की उपलब्धता, प्रशिक्षण और कृषि सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि मंत्रालय की फरवरी 2026 में जारी जानकारी के अनुसार प्रमुख उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में स्वयं सहायता समूहों को कुल 1,094 ड्रोन वितरित किए थे। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत दिए गए थे। ड्रोन से मिलने वाले लाभ को बढ़ाने के लिए नियमित काम, उपकरणों का रखरखाव, परिवहन की सुविधा और किसानों को उचित लागत पर सेवाएं मिलना

0: जरूरी है। महिला समूहों को पर्याप्त कृषि कार्य उपलब्ध होने से ड्रोन का उपयोग बढ़ाने और आय अर्जित करने में मदद मिल सकती है। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिए कृषि में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को एक साथ बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना और किसानों तक आधुनिक कृषि सेवाएं पहुँचाना है।
1: हरवीर जी, एक चीज और है कि जो प्रधानमंत्री ने श्री अन्न की बात की, मोटे अनाजों को एक तरह से हम लोगों ने जो कृषि क्रांति हुई है, हरित क्रांति जो हुई है, उसको भुला दिया था। और मोटे अनाजों के साथ एक बड़ी बात यह है कि उसमें कीटनाशक और रासायनिक खादों की जरूरत कम पड़ती है, पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। तो ये किस तरह से चेंज ला रहा है भारतीय कृषि की दशा को, दिशा को?
2: असल में ये बात सही है कि जो हमारे मोटे अनाज हैं, जिनको हम पहले मोटे अनाज कहते थे, उसके बाद उसको कैटेगराइज किया गया।
1: जी
2: जो मिलेट्स हैं उसमें श्री अन्न जो है उनकी
1: जी
2: कैटेगरी ठीक से परिभाषित की गई और उनका एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। और ये न्यूट्रिशियस फूड है, मतलब एक तरीके
1: जी
2: से ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर भोजन है। और इसलिए उसको प्रमोट करने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी मनाया। उसका नतीजा ये हुआ कि इस तरीके के जो उत्पाद हैं उनके मांग बढ़ी, उनका जो उनसे बनने वाले जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनकी संख्या बढ़ी। और इनके जो उगाने वाले लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर ये मार्जिनल लैंड्स जहाँ पर है, जहाँ बहुत ज्यादा सिंचाई की सुविधाएं नहीं है,
1: जी
2: वहां पर इस तरीके के ये खाद्यान्न जो है उनका उत्पादन होता रहा है। तो उन किसानों के लिए ये एक बड़ा मौका लेकर के आया है। और अगर आप देखेंगे कि हमारा जो भोजन है उसमें काफी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है और उसमें इस तरीके के जो अन्न है उनकी जो मात्रा है बढ़ी है और उनको प्रति लोगों का रुझान आया। ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से इनको बेहतर पोषक तत्वों के रूप में एक तरीके से पेश किया गया और कैंपेन चला गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर, तो उसका फायदा किसानों को मिला। आपकी बात सही है कि इस तरह के जो अन्न है उनमें, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा सिंचित क्षेत्र में नहीं होते और उसमें जो उर्वरक हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनकी भी जरूरत कम पड़ती है और कीटनाशकों की लगभग ना के बराबर हो जरूरत होती है, उसमें इस्तेमाल ही नहीं होता ज्यादातर मामलों में। तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा है और ये क्योंकि उससे आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी घटती है। अगर जिसमें आप ज्यादा उर्वरक और ज्यादा रसायन इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी लागत भी कम रहती है।
1: अब समय चर्चा की इजाजत नहीं दे रहा है। भारत की कृषि और किसानों की हालत बदलने की दिशा में मोदी सरकार की योजनाओं पर इस सार्थक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुक्रिया मिश्र,
3: धन्यवाद।
4: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 28वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, किसानों की प्रगति और कृषि उद्यमों की नई क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा। इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं, रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल

आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इसराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा। मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी USB पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और USB कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 मेगाबाइट। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे USB फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक CD के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओं, यही तो है।

0: ज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।

0: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
1: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
2: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है? आपने कौन कौन से आम खाए हैं, उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
4: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
5: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
6: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है, और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
7: बिल्कुल ठीक।
6: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
8: वीर जोरावर की
9: जय।
8: वीर जोरावर की
9: जय।
8: जय जेरापुर, जय भारत।
9: जय जेरापुर, जय भारत।
5: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
10: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
5: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे, और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
10: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
11: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
6: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
11: जी।
6: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत दे।

0: सकेंगे। जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
1: बिल्कुल,
0: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज, वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
1: जी मंत्री जी।
0: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
4: जोरावर सिंह कहा जा रहे थे महाराज जोरावर सिंह।
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
2: जी,
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
1: जी,
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
5: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे, वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
5: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
4: बिल्कुल।
5: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
5: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: चारों तरफ से घिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: यू आर अंडर अरेस्ट।
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी।
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश शाबाश।

0: الجن ما خشوع موتا اینم دلوانگا
1: حضور
2: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے لعنت ہے تم پر سالار جنگ لعنت ہے لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا
0: چلو اس کو
3: چلو مجھے छोड़ो मुझे
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए तरह तरह के लालच भी दिए गए लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे
1: देखो जोरावर अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा
2: अप्पा ये नहीं हो सकता
1: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम बात मान लो मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा
2: ये नामुमकिन है
1: वाय
2: हमें माफ कीजिए हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते हम देशद्रोह नहीं करेंगे हरगिज नहीं करेंगे अप्पा साहब अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है
1: तो नहीं मानोगे देखो देखो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें ये सजा
2: अप्पा साहब हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए हमने जो किया हमें उस पर गर्व है कैद फांसी या काला पानी इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे जरा भी नहीं
1: एक्चुअली यू आर अ फूल
4: जोरावर की यह बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई
5: काला पानी की सजा
4: हाँ काला पानी की सजा भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी
5: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे
4: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं भारत माँ का बहादुर बेटा हूं इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा फिर मैं तो राजा हूं
5: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया
6: तो श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु कुसुमलता चेतना अरशद प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान।

0: ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഇനി 8:40 കേൾക്കാം. അടുത്ത പരിപാടി ഹിന്ദി പാഠം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ.
1: ഹിന്ദി പാഠം കേൾക്കാം.
2: ഹേ ആകാശവാണി കാ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ഹേ ആയി ആപ് സുൻതെ ഹേ ഹിന്ദി പാഠ് അധ്യാപിക ഹേ എൻ ജയ ഛാത്രായം ഹേ ജിസായ സജി ഓർ ആത്മാ മരിയ
3: നമസ്തേ ജി.
4: നമസ്തേ ബേഠിയേ. अपना अपना नाम बताइए.
3: मेरा नाम आत्मा मरिया है.
4: और तुम्हारा नाम क्या
3: है? मैं जिसा हूँ.
4: अच्छा, आप लोगों के घर में पेड़ है?
3: हाँ जी.
4: हाँ जी. आप लोगों ने पेड़ लगाया है घर में?
3: हाँ जी.
5: हाँ जी.
4: अच्छा, पेड़ हमारी संपत्ति है ना?
3: हाँ जी.
4: पेड़ों का संरक्षण करना कर्तव्य है. एक बार एक पेड़ की संरक्षण के लिए जूलिया नामक एक लड़की ने जो संघर्ष किया उसकी कहानी है जूलिया और लूना. यह कहानी आज हम पढ़ेंगे. श्रीमती नेहा सिंह की कहानी है. ये कहानी किसने लिखी?
3: श्रीमती नेहा सिंह ने लिखी.
4: श्रीमती नेहा सिंह ने
3: लिखी.
4: श्रीमती नेहा सिंह के बारे में सुना है?
3: नहीं जी.
4: अच्छा, मैं बताऊंगी. सुनिए, नेहा सिंह का जन्म 1982 मई 5 को वाराणसी में हुआ. नेहा सिंह का जन्म कब हुआ?
3: 1982
4: में हुआ. और उनका जन्म कहाँ हुआ जिसे बताइए?
3: वाराणसी में.
4: वाराणसी में हुआ. वे अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखती है. श्रीमती नेहा सिंह अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में लिखती है. उनकी 19 पुस्तकें प्रकाशित की है. उनकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित की है?
3: 19
4: पुस्तकें. 19 कितना है?
3: 19.
4: 19 माने
3: 19.
4: वे बच्चों के लिए कई पुस्तकें लिखती है. उनकी पहली पुस्तक द वेनसडे बाजार 2014 में प्रकाशित की. श्रीमती नेहा सिंह की पहली पुस्तक का क्या नाम है आत्मा बताइए?
3: द वेनसडे बाजार.
4: द वेनसडे बाजार. वह कब प्रकाशित की जिसा?
3: 2014 में.
4: 2014 में प्रकाशित की है. नेहा सिंह का जन्म कब हुआ आत्मा बताइए?
3: 1982 को.
4: 1982 मई 5 को हुआ. ते है, नेहा सिंह का जन्म कहाँ हुआ?
3: वाराणसी में.
4: वाराणसी में हुआ. उनकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित की है आत्मा बताइए?
3: 19.
4: 19 पुस्तकें प्रकाशित की है. उनकी पहली पुस्तक का क्या नाम है जिसका?
3: द वेनसडे बाजार.
4: द वेनसडे बाजार. ठीक है, अब हम पाठ भाग शुरू करेंगे. एक कहानी शैली में लिखा पाठ है. किस शैली में लिखा है?
3: कहानी
4: शैली में. कहानी का नाम है जूलिया और लूना. कहानी सुनिए. एक रोज कुछ हटे कटे आदमी एक बड़े से पेड़ को काटने पहुंचे. एक लड़की ने उन्हें देख लिया. वह झट पेड़ पर चढ़ गई. आदमियों ने पहले उसे समझाया, फिर धमकाया, बहुत डराया. मैं नहीं उतरूंगी, लड़की चिल्लाई और एक शाखा पर जा बैठी. आदमियों ने सोचा आखिर कभी तो उतरेगी, तब काटेंगे पेड़ को. दिन हफ्ते महीने बीत गए पर लड़की तो उतरी ही नहीं. यह भाग एक बार आत्मा पढ़िए.
3: एक रोज कुछ हटे कटे आदमी एक बड़े से पेड़ को काटने पहुंचे. एक लड़की ने उन्हें देख लिया. वह चट पेड़ पर चन गई. आदमियों ने पहले उसे समझाया, फिर धमकाया, बहुत डराया. मैं नहीं उतरूंगी, लड़की चिल्लाई और एक शाखा पर. आदमियों ने सोचा आखिर कभी तो उतरेगी, तब काटेंगे पेड़ को. दिन हफ्ते महीने बीत गई पर लड़की तो उतरे ही नहीं.
4: अच्छा, एक रोज. एक रोज माने वंस. कुछ हटे कटे आदमी. हटा कटा माने स्ट्रॉन्ग. कुछ हटे कटे आदमी सम स्ट्रॉन्ग पीपल एक बड़े से पेड़ को काटने पहुंचे. हटे कटे आदमी वहां किसके लिए पहुंचे? एक बड़े से पेड़ को काटने के लिए पहुंचे. काटना माने
3: टू कट डाउन.
4: टू कट डाउन. पहुंचे, पहुंचना माने टू
3: रीच.
4: पहुंचना माने टू
3: रीच.
4: एक बार कुछ बलवान आदमी एक बड़े से पेड़ को काटने के लिए आए. तब एक लड़की ने उन्हें देख लिया. हटे कटे आदमी पेड़ काटने के लिए आते समय किसने उसको देखा? एक
3: लड़की,
4: एक लड़की ने देखा, एक लड़की ने उनको देखा, और पेंगुटी अवरे कंडो। वो पेड़ पर चढ़ गई। कौन पेड़ पर चढ़ गई? वो लड़की जल्दी ही पेड़ पर चढ़ गई। चढ़ का अर्थ है
3: टू क्लाइंब,
4: टू क्लाइंब। लड़की ने कहाँ चढ़ गई?
3: लड़की ने पेड़ पर चढ़ गई,
4: पेड़ पर चढ़ गई। यह देखकर आत्मियों ने पहले उसे समझाया। यह देखकर आत्मियों ने पहले उसे समझाया। समझाना मीन्स
3: पर्ण
4: मनसिलाक्का। फिर धमकाया। धमकाना माने टू थ्रेटन, भीषणी पड़तगा। पहले उसे समझाया लेकिन लड़की नहीं मानी, तो फिर लोगों ने उसको धमकाया और फिर बहुत डराया। डराना माने
3: टू फ्राइटन,
4: टू फ्राइटन, भयपड़तगा। बहुत डराना, बहुत माने वेरी मच, डराया, उत्तरी भयपड़ती। लड़की ने मैं नहीं उतरूंगी, उतरना माने टू गेट डाउन। लड़की

0: उस प्रकार दिन हफ्ते महीने बीत गए। एक हटे कटे आदमियों ने सोचा, कभी तो यह लड़की पेड़ से उतरेगी, उस समय हम इस पेड़ को काटेंगे। लेकिन वे लोग कई महीने वहां इंतजार करते रहे, लेकिन दिन हफ्ते महीने बीत जाने पर भी वो लड़की पेड़ से नहीं उतरी। कई दिन हफ्ते, हफ्ते माने एक आयचगल, और फिर महीने, कई हफ्ते मींस वीक, महीने माने मंथ बीत गए। बीत जाना
1: टू पास,
0: कड़नु पोई। धारालम दिवसंगलम आयचगलम मासंगलम कड़नु पोई, पर लड़की तो उतरी ही नहीं। महीने बीत जाने पर भी वो पेड़ पर से नहीं उतरी। मासंगल कड़नु पोईटम वो लड़की पेड़ पर ही बैठी रही। മാസങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടും ആ പെൺകുട്ടി മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതേയില്ല. അവൾ ആ മരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തിനായിരുന്നു ഇറങ്ങിയാൽ എന്തോ സംഭവിക്കും? കാട്ടേക ഹന ലഡ്കിനെ പെഹലെ കഹ മേ നഹി ഉത്തരൂംഗി. ലഡ്കിക്ക് ഇസ് നിർണയ പർ ആപ്കാ വിചാർ ക്യാ ഹെ? ലഡ്കിനെ പെഹലെ ഉൻ ആത്മിയോ സേ കഹ മേ നഹി ഉത്തരൂംഗി. ലഡ്കിക്ക് ഇസ് നിർണയ പർ ആപ്കാ വിചാർ ക്യാ ഹെ? ജിസാ ബതായേ.
1: जूलिया उस पेड़ को बचाने का दृढ़ निश्चय कर रही थी।
0: अच्छा ठीक है, जूलिया उस पेड़ को बचाने का दृढ़ निश्चय कर रही थी। वो दृढ़ निश्चय लेकर उस पेड़ पर ही बैठी रही। जूलिया उस पेड़ को बचाने के लिए निश्चय किया था, इसलिए उस पेड़ पर से नहीं उतरी। दूसरा पैराग्राफ सुनिए। लोगों को जब पता चला तो उसके लिए खाना, पानी, स्टोव, किताबें, गद्दा, कंबल, कपड़े सब ले आए। शुक्रिया, लड़की चहचहाई। उसने चिड़ियों की तरह पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। बारिश आई, सर्दी आई, भयंकर आंधी तूफान आए, बर्फ पड़ी, पर पेड़ ने लड़की को बचाए रखा और लड़की ने पेड़ को। जैसा ये पैराग्राफ पढ़ सकते हो?
1: हाँ जी,
0: पढ़िए।
1: लोगों को जब पता चला तो उसके लिए खाना, पानी, स्टव, किताबें, गद्दा, कंबल, कपड़े सब ले आए। शुक्रिया, लड़की चहचहाई। उसने चिड़ियों की तरह पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। बारिश आई, सर्दी आई, भयंकर आंधी तूफान आए, बर्फ पड़ी, पर पेड़ ने लड़की को बचाए रखा और लड़की ने पेड़ को।
0: अच्छा, कई महीने बीत जाने पर भी लड़की पेड़ से नहीं उतरी, तो लोगों ने उसे खाना, पानी, कुछ लेकर दिया, क्योंकि वे लोग भी उस पेड़ को काटना अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं लगता था, है ना?
1: हाँ,
0: लड़की के समान वहाँ रहने वाले, उस गांव में रहने वाले लोग भी उस पेड़ को काटना पसंद नहीं करता था। इसलिए उस लड़की को सपोर्ट करने के लिए वहाँ के लोग क्या क्या दिया उस लड़की को? खाना लेकर दिया, पानी दिया, और इवन करने के लिए स्टोव भी दिया, और पढ़ने के लिए किताबें लेकर दिया, गद्दा, लेटने के लिए मेत्ता मैट्रस कोंड कोडतो, कंबल ब्लैंकेट, और कपड़े उनको पहनने के लिए कपड़े दे दिए। इसी प्रकार लोगों ने सब कुछ लेकर दिया। ये सभी चीजें मिलने पर शुक्रिया, लड़की चहचहाई। ये सभी चीजें मिलने पर लड़की ने क्या कहा उन लोगों से?
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया, शुक्रिया माने क्या है? शुक्रिया का अर्थ क्या है?
1: थैंक्स,
0: थैंक्स, धन्यवाद, है ना? धन्यवाद कहा और चीजें मिलने पर उसने शुक्रिया बताया, और लड़की चहचहाई। चहचहाना माने से इन ए स्वीट टोन, മധുരമായി സംസാരിക്കുക, നല്ല സ്വീറ്റ് വോയിസ് അല്ലേ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട്? അതുപോലെ एक चिड़िया की तरह, एक पक्षी की तरह यह लड़की भी पेड़ पर रहती है कुछ दिनों से, है ना? इसलिए वो भी एक पंछी की तरह, उसने चिड़ियों की तरह ही उसने भी उत्तर दिया। मीठे स्वर में लड़की ने धन्यवाद किया। उसने चिड़ियों की तरह माने एक पक्षी की तरह पेड़ पर रहने के लिए घोंसला बना लिया। चिड़िया पेड़ पर क्या बनाकर रहती है? घोंसला बनाकर रहती है। उसी प्रकार लड़की भी उस पेड़ पर घोंसला बना लिया। घोंसला पक्षियों के लिए घोंसला तो बहुत छोटा है ना, लेकिन इस लड़की के लिए थोड़ा कुछ बहुत बड़ा घोंसला चाहिए। उसी तरह उस लड़की को रहने के लिए कुछ बड़ा सा घोंसला

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।

0: ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ വാർത്തകൾ കേൾക്കാം. ഡൽഹിയിലെ
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation five major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
2: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े, लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है. आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं. इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे.
1: Prime Minister Modi interacted in New Delhi today with members of the Indian contingent that participated in the 2026 Asian Games concluded in Japan earlier this month. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi described the recent Asian Games

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
4: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
5: तुड़ंगम इन्वेस्टिंग इंटे पाठम।

0: ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര കൃഷി കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ.
1: सर 5000 रुपए लगाइए और 8000 रुपए प्रॉफिट पाइए. ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट.
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है. इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY. Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक.

0: പി ജയചന്ദ്രൻ പാടിയ ഗാനമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. ചിത്രം അമൃതചുംബനം. ഗാനശില്പികൾ യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി, ജി ദേവരാജൻ. ചലച്ചിത്ര ഗാനം ഇനി 11 മണിക്ക് കേൾക്കാം. സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44 മിനിറ്റും 40 സെക്കൻഡും. ഇനി 8:45 സമാചാര സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया. कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता. सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया. मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा. रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए. भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे. सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया. सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ. और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की. कहा, देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा. कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है. उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है.
2: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े. लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है. आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं. इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है. श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी. नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक A.Ambarasu की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है. स्वदेशी रूप से विकसित यह उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है. उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया. श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही. उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है. सरकार ने पहली नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पहली नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है, उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।

0: द न्यूजीलैंड FTA.
1: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा. वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है. अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है.
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया. यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं. जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है. सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है. हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया जा रहा है.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी. इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से एलपीजी गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी. इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी. इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए. इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी. सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए हैं. वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया.
4: वी इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन seeking the cooperation of the public in voluntary giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
3: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता.
5: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं, तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती थी. अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती. इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी.
3: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है. साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है. दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं. ये आकाशवाणी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है. नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है. उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है.
6: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो कर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है. क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और जहां पंच वहां परमेश्वर. शूटिंग में 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है.
2: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार.
7: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74,316 पर पहुंच गया. निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 रुपए पर बंद हुआ.
2: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है.

0: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से साय 5 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताजा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़ आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court. IR irregularities also seeks poll panel's reply if alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communication satellite for Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for Indian Navy. Government mandates caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 74,316. And Prime Minister Modi interacts with India's Asian Games contingent in New Delhi, says country is poised to emerge as a global sporting powerhouse. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
3: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
2: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varunastra heavyweight torpedoes, worth over 1,500 crore rupees, was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the Apex Court in the national capital over alleged irregularities.